कोई भरोसा नहीं इस शरीर दा। नाम दा तुलहा तैयार कर जिदे तो तू चढ़ के पवजल पार कर जावे। साहब कहंदे ने समा किसे दी इंतजार नहीं करदा।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी। जिंदगी विच कोई ऐसा काम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना ता एदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

मेरे हिरदे च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेन बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेन जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है। ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विचों नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल जबान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां, बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हाथ पैर भी सिद्धे ने। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, उहदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद ए जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभाव तेरा नेम बख्श लैण दा है, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

करुण मंगी है, हर श्रद्धा हर प्यास इस दा तरला है, शौ नूं पौणा ही जीवन दा मकसद है, यही दर्शाया है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, सौ पौण लई तन मन अर्पो पूज चढ़ावो, सब कुछ ही अर्पणा पैंदा है। इस राग विच ऋषभ गंधार अते धैवत कोमल लगदे हन, मध्यम तीबर है और पंचम वर्जत है, निषाद शुद्ध लगदा है। इसका बादी सुर धैवत अते संवादी रे है, गायन समा दिन दा दूजा पहर। निर्धात राग गुजरी विच पहला शब्द श्रवण करो, गा रहे हैं भाई तेजपाल सिंह जी, भाई सुरिंद्रपाल सिंह जी, सिंह बंधु। शब्द दे बोल हैं ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो। दूजा शब्द भाई निरंजन सिंह जी की आवाज विच श्रवण करो, शब्द है गुजरी जात गवार जा सौ पाए अपना। पहला शब्द ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो।

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया ते मैल नाल पारा भी हो गया। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी काला होआ स्याओ फिर तरेगा किवें मैल नाल ते पारा हो गया।

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चलदे बनने। पर भोजन ता कर लो ना। आ वेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करदे ने, यथाशक्त सेवा भी करदा। ए अज नहीं, ए रोज ही एदा चलदा है। सतगुरु कहन लगे भाई फिर तां तैनू कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करदे हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करदे हो, कदे अपने वल वेंदा है, कदे बाबे वल वेंदा है।

चोर की हम परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए बाबा जी, खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कह लगे फिर कदे आवांगे तो छकांगे, हुण असी चलने, पर जे तू चोरी ना करें तो चंगा, ये माड़ा काम है। कहन लगे बाबा एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, पर चोरी नहीं मैं छड़ सकदा। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा।

गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकदा।

मन विच ख्याल आ गया भाई चलो राजे नू चल के लुटने आ, वो केड़ा गरीब है। शाही पोशाक पहन ली, घोड़े ते चढ़ बैठा ते रात राजे दे महलां नू तुर पिया। रस्ते च सिपाही ने रोकिया, भाई तू कौन है, इस वेले किथे जा रहे हैं? ते बाबे दा बचन चेते आ गया, फिर सच बोली, मैं पूछिया तू कौन है? कहंदा तेनू नहीं दिस रहा मैं कौन, मैनू नहीं दिस रहा तू कौन, मैं चोर हां। हुण पहरेदार सोचण लगा, भी चोर भी कदे कहंदा मैं चोर हां? ए राजे दा कोई खास निकट वर्ती होना, ते जे मैं रोक लिया तो सवेरे होर ना कोई बिपता खड़ी हो जाए। जा भाई नंग जा, जा अंदर वड़िया, दीवे बुझा दिते, हीरे जवाहरात पुखराज नीलम सोना चांदी पांड बन ली। बंदे दा मन बड़ा लालची, होर बेंदा पर कुछ होर मिल जाए। हनेरा सी, हाथ मार दे मार दे, टोंदे हैं टोंदे हैं, किसे गिल्ली जी चीज नू लगा ते ओ जबान नाल लाया ते ओदे विच लून सी। बाबे दा बचन चेते आ गया, पे लून खा के हराम नहीं करना। भाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही है,

देहरा मसीत सोई पूजा ओ निवाज होई। देहरा और मसीत पूजा अते निवाज इन्हां नूं एक ही समझो, क्योंकि जेड़े इन्हां विच फर्क समझदे नहीं उन्हां दे मना विच ही नफरत रहिंदी। सदियां तों हिंदू मुसलमान इस मसले ते लड़दे झगड़दे आए, फर्क समझ के। कुछ लोग कहंदे ने कि सिख धर्म वक्खवादी है, पर सिख धर्म वक्खवादी नहीं, इह सिख धर्म दा ही उपदेश है। धर्म दे नां ते लड़न वालियो सुनो,

कैसा सुंदर उपदेश कर रहे हैं। अल्लाह अपेक सोई कुरान ओ कुरान ओ ही हिंदू कुरान पढ़ता है, मुसलमान कुरान पढ़ता है, मुसलमान अल्लाह नु याद करता है, हिंदू राम नु याद करता है। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे ने अल्लाह दा नाम लेन वाले है, कुरान शरीफ पढ़न वाले है, मुसलमान नु ए उपदेश, हिंदू नु की उपदेश ऐ पुराण पढ़न वाले हिंदू, ऐ राम नु याद करन वाले हिंदू, अपने मन विच ए विचार कर। एक बंदा मसीत विच बह के निवाज पढ़ता है, वो अपने अल्लाह नु याद करता है। एक ब्राह्मण मंदिर विच बह के पूजा करता है, वो अपने परमेश्वर नु याद करता है। टंग दोनों दे अलग ने, एक निवाज पढ़ता है, एक पूजा करता है, पर ए सोचे है दोनों दा मकसद की है। मुसलमान अल्लाह नु याद कर रहे है, हिंदू अपने राम नु प्या याद करता है, मकसद दोनों दा।

ब्राह्मण शूद वैश और हिंदू और मुसलमान दो वटियां कौमा और दोनों दाई झगड़ा सदियां तो चलिया आ रहे है। पर गुरु नानक दे घर दा उपदेश की है कि जेड़े लोग रब दे नां ते लड़दे हन ओ पुल्ले और पटके हुए लोग हन। भाई साहब जी बयान कर दे चार वरन चार मजहबां

गंगा, बनारस हिंदुओं वास्ते पूजनीक नहीं, मक्का काबा मुसलमाना वास्ते। मक्का काबा मुसलमान पूजते ने, गंगा और बनारस हिंदू पूजते ने। अगे भाई साहब की कहते हैं।

और कतेबा नू भुला दिता है। वेद की पूजा हिंदू करता है, कतेब नू मुसलमान पूजता है। भाई साहब जी कह रहे ने वेदा और कतेबा का उपदेश भुला दिता है और दुनिया जिहड़ी है देखो लालच विच फस के शैताना दे राह ते जो

सच किनारे रह गया, सच एक पासे रह गया। ब्राह्मण और मुलाने आपस च पे लड़दे मरदे ने। भाई साहब जी कह रहे ने, अगर इंसान सच नू ना छड़े, सच पल्ले रखे।

अल्लाह दे राम दे नाम नु समझिया नहीं, झगड़े पाले और जिहड़ा ए जन्म मिले है झगड़िया विच गवा लिया और आवा गाउण दा चक्कर जिहड़ा है ए उस

इस पौड़ी दे विच भाई गुरुदास जी ने इस्लाम धर्म दा जो असूल है उहदे बारे दस्या कि मुसलमान वास्ते रोजे ईद निवाज जरूरी इन्हां दे पीर पैगंबरां दा इह उपदेश पर जिस वेले मुगलां दा राज होया हिंदुस्तान ते ता औरंगजेब जिहड़ा कि इक जालम बादशाह सी उसने यह हुक्म कीता सी कि हिंदुस्तान विच हिंदू धर्म नहीं रहन देना ता पंडित कृपा राम ने आनंदपुर साहब आके गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार पुकार कीती साडे हिंदू धर्म दी रक्षा करो ता गुरु तेग बहादुर साहब ने अपना सिर दे के हिंदू धर्म दी रक्षा कीती और गुरु नानक साहब दे अवतार तो पहला भी ठाकुर द्वारे ढाए जांदे रहे भाई गुरु

इन्हां ने अपना की काम बना लिया, राज भाग मिल गया, लोगों नूं आपस विच लड़ाना और जद भी पता लगना किधरे सोहनी औरत है उस नूं हथियाण वास्ते हजारा बंदियां नूं लड़ाई दे मैदान विच मरवा देना। राजियां दा, वजीरां दा, नवाबां दा ये काम रह गया, औरतां वास्ते लड़ाई झगड़े, हजारां लोकां दा खून बहा देना एक औरत वास्ते, पापे दा वरतिया वरतारा, इतना पाप हो गया रब दे घर नूं ढा के, ते फिर कहना कि मैं धर्मी हो गया। नहीं, भाई साहब जी कह रहे ने कि देखो ये नाराजियां महाराजियां दा वजीरां दा की कम बन गया।

मोम वर्गा होना चाहिए, जिस तरह मोम पिघलती है और रोशनी देती है, इसे तरह ए मुसलमान तू भी किसी नु दुखी देखे ते तेरा मन भी मोम दी तरह पिघल जावे, आप भावे दुखी हो पर दूसरे नु सुख दे।

और दूसरे पास से ब्राह्मण ने उपदेश किया, कहे कबीर जो ब्रह्म विचार सो ब्राह्मण कैयत है हमारा। जेड़ा ब्रह्म दी विचार करे, जेड़ा ब्रह्म नाल जुड़िया रवे, असी ते ओनू ब्राह्मण कहने हैं, क्योंकि जेड़ा ब्रह्म नाल जुड़ गया वो फिर जिद भी जिस पासे भी देखेगा, वो जिधर भी देखेगा ओनू ब्रह्म ही नजर आवेगा। जे हर पासे ब्रह्म है, हर पासे परमेश्वर है, ते फिर किहदे नाल झगड़ा ते किहदे नाल लड़ाई, किहदे झगड़े खत्म हो जाणगे। और गुरु घर दा उपदेश है, फिर ते इंसान इहो ही कहेगा, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कोई बेगाना नहीं, कोई पराया नहीं,

और ए उपदेश सारिया वास्ते है कि आओ भाई असी मना विचो नफरत कटिए दुबदा भाव दूर करिए एक परमेश्वर दे राह ते चलिए और आपा एक होइए।

गुरु साहबान ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जितनिया भी लड़ाइया लड़िया वो किसी फिरके के खिलाफ नहीं, वो जुलम के खिलाफ लड़ाई सी। जुलम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहास पढ़ के देखो, उन्हां दे नाल हिंदू और मुसलमान पठान तक साथ दे के जुलमिया दे नाल लड़िया करदे सन। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की फौज विच हिंदू भी सन, मुसलमान और पठान भी सन, जिन्हां ने समझिया कि ए इंसानियत दे भले वास्ते लड़दे ने। हथियार दो बंदे चुकते हैं, एक जुल्म करने वाला और एक जुल्म नूं रोकण वाला। जिहड़ा जुल्म करदा है उहनूं फिटकारां पैंदियां ने, ते जिहड़ा धर्म दी रखिया वास्ते हथियार चुके, लोकां दे भले वास्ते हथियार चुके, जुल्म दे टाकरे वास्ते हथियार चुके, दुनिया हमेशा उहनां दी पूजा करदी है। तो आओ भाई आपां भी महापुरुषां दे राह ते चलिए, और ए जिहड़ा उपदेश है इस नूं अपने दिल विच थां लईए, उपदेश ते चलण दी कोशिश करिए। गुरु साहिबां दा उपदेश अणख नाल जीवना, धर्म दी किरत करनी, नाम जपना और वंड छकना, जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं मन

सिमरन करदा है जगयासु, फिर वाहिगुरु हमेशा एदे अंग संग हुंदा है। उन्ना चिर ही ठोकरां पैंदियां ने जिन्ना चिर असी उन्हूं विसार दईए। महाराज कहंदे ने दुख तदे जां विसर जावे, पर जे उहदा सिमरन करिए, नाम जपिए, ते ओ हमेशा हर जगह सहाई हुंदा है, जिवें गुरु पातशाह कह रहे ने।

कला तार जग में परवरे। राय पोए दी तलवंडी विच निरंकार ने मैता कालू दे घर माता तृप्ता दी कुख चो जदो जन्म लिया। दौलतां दाई ने वेख्या के जिस कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है ओ सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है। और जिवें हजारां नहीं लखां नहीं करोड़ां जय जयकार दियां आवाजां आ रही हैं और एक ऐसी महक उस कोठड़ी विच प्रकाश उस कोठड़ी विच जिस वेले ए बालक ने जन्म लिया आ जन्म लेंदियां ही आ बालक मुस्कराया। हैरान रह गई दौलतां दाई मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पाके दौलतां दाई धन हो गई। सत सिगत बोलो श्री बधाई दीतीस। बार आई कोठरी विचों बधाई दीती मेहता जी वधायो तुहाडे घर तां कोई अनोखा ही बालक जन्मे जिस दे जन्म लेंदियां ही

अंगूठी पा के जदों खेडन वास्ते बाहर गए ते खेल के जदों घर वापस आए ते हाथ विच मुंदरी कोई नहीं सी। अंगूठी ना वेख के माता तृप्ता जी कहन लगे, नानक हुणे मैं तेरे हाथ

आख्या वेखो सोने दी मुंदरी भी बार दिया है। मैं ता कालू जी कहन लगे ए जो कुछ मिलता है करो बार वंड आंदे। आख्या अच्छा इनू किसे कम कारे लाइए नानक आ कर दियां गाइयां मजी।

कोई गल नहीं, परमेश्वर तेनू होर देवेगा, होर देगा तेनू। ओने आख्या प्रभु ता परमेश्वर पिछो देवेगा, पहला तू मेनू हर जाना दे। साहब जी दी बां

खेत दा मालक जदों राय बुलार दे कोल पहुंचिया आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मेनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां आ दूजे दे खेत विच छड़ के सारा खलियान खेत खराब कर देता। इदा हर

तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है, जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले, नहीं तो लखा दा घाटा तेनू हो जावेगा। कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है, चोली विछांदा है, गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है, ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल। जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले, दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने, कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया, पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया, ते अगे फिर काम चलावांगे। साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई, कर लो हिसाब। ते जदों सारा हिसाब होया, इतिहास विच लिखे है के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया, हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए। दौलत खान बड़ा हैरान होया, कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते दे जांदा है, ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च

आवाज आई आ नानक मैं तेनु संसार ते हटियां करन वास्ते ता नहीं भेजिया, मैं ता तेनु संसार विच भेजिया जगत जलंदा जल रहे है उना नु जाके ठारना है तू। ता गुरु नानक सच्चे पातशाह ने हाथ जोड़ के बेनती की, हे निरंकार मेनु उपदेश दियो मैं संसार नु की जपावा, मैं संसार नु की जपावा। आवाज आई उस जोत विचों, नानक तू संसार नु जपाउना है, जगत जलंदे नु ठारना है।

बेबे नानकी प्रतीत वाली सी, परोसे वाली सी, कहन लगी इवे ना आखो, मेरा नानक संसार विच डुबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डुब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों

ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वाल करके पंडित जल दे रहे है सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वाल मुंह कर लिया ते लोटे दे नल जल पाना शुरू कर दिता। सात संगत बोलो श्री। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे

साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडा विच कुछ नहीं जे पिया, जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पवोगे तां इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना, उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। सत सिखत बोलो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले।

कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणे। सात सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरा दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो

उस बच्ची ने सुनिया के इस जीवन दा कोई भरोसा नहीं है ता अगा होके जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरना ते सिर रखिया गुरु नानक दे चरना दी शो पाके उस बच्ची दे कपाट खुल गए ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार ते आई हूं और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच दा उपदेश गुरु नानक ने दिता उथे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो एक प्रभु दा सिमरन करो उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नू हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है, पर मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे।

मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

ब्रह्मा ए दिया पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्मपाती बिस्न डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोलेनाथ शंकर फूलां विच वसदा है।